0: की एक बरसाती में रहने वाला। आज यहां आया है मुंबई बेचने। बदले में कुछ तो चाहता होगा। क्या? मांडवा।
1: रावण से उसकी लंका ही मांग ली।